ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वे जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

फ्रैम्प्टन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5090 पर कॉल कीजिए। 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

प्रेम कंठ पुनि पई गुण गाए भक्त गया हर नाम ते आया सबनी थाई रव्या पाठ जुगान जाता मन पता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई मुठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पा

हार, गुरपुरा कृपा करी काट्या दुख रोग, मन तन शीतल सुखी पया प्रभु अमन जोग रहा। औखद हर का नाम है जित रोग न रे आपे, साथ संग मन तन हिदय फिर दुख न जापे। हर हर हर हर जापी है अंतर ले लाई, किल विपुत्र है सुध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक तत्र हर के गुण गाई। बिलावल भला पंवा हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद की लस्तिका जिन मारिया रोग रहा। गुरपुरा हर जापी है नित की क्या भोग, साथ संगत क्या बाग रहे मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख

आदित्य अगस्त्यो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्यो देवता ऋणीये बीजम सूर्यगुं शक्ति आदित्यो कीलकम मम आदित्य।

वचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानु मुखं पातु सदा रविः जिह्वा

पाश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छसन्निभः सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमस्ते श्रीकुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुलसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्ववंद्यं महाघोरं त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं सो

साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਡਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 0162131165।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आप भी सभी भाई बहनों को राखी का जो बड़ा पावन त्योहार है सभी मना रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं सभी मना रहे हैं। कुछ दूसरे कल्चर के भी लोगों में ये भावना आ गई है, वो भी राखियां मना बंधवाते हैं और उसको मनाते हैं। तो आप भी जरूर मनाइए, सभी को, सभी बहनों को इस बड़े त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया त्योहार है सभी का और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं सभी। तो अगर मिठाइयाँ लेनी है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो लीजिए, ये जो गाना है आपके लिए, बढ़िया सा गाना मैं आपके लिए पेश करती हूँ। तो अब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूं आपकी होस्ट मीरा और उम्मीद रखती हूं कि तो अब आपका आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं, आपको से गीत सुनाएंगे। सो आप जरूर 28 अगस्त पूर्णिमा के दिन ये राखी का त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, तो आप सभी बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो सभी के लिए ये राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी बताएंगे। पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी किस्म की आपको आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हैं और बढ़िया फर्नीचर चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, या फिर आपने अपने घर में आपको बारबेक्यू चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, टीवी बढ़िया सा चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। अभी उनकी भारी सेल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, या फिर आप उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 9057990045। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को इस राखी के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो अब आपको अगर बढ़िया बढ़िया राखियां चाहिए तो आप इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे जाइएगा।
0: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फर्नीचर का काम करवाना है तो आप आपको जाना होगा, अगर लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आप मास्टर कलेक्शन डिपो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपो आपके लिए खुल चुका है भोर रोड पे। तो और जानकारी के लिए आप मास्टर कलेक्शन पर जाइए और उनको कॉल कीजिए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नया जैसा बना देते हैं। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा राखी का गीत। आपको मालूम है कि राखी के त्योहार जब आता है तो सभी बहनें बढ़िया बढ़िया राखियां खरीदने जाते हैं और बढ़िया बढ़िया राखियां अपने भाई को कहीं विदेश में जाते हैं, तो विदेश में से उनको बहुत दिन पहले राखियां उनको भेजनी पड़ती हैं। तो मुझे याद है कि एक ज़माना था 70s में जहाँ पे राखियां इतनी नहीं मिलती थी जैसे कि आजकल मिलती हैं, तो उस ज़माने में मैं वैसे ही खरीद करके डेकोरेशंस वाले धागे तो फिर उनसे खुद अपने हाथों से बना करके तो फिर मैं बना करके पहले ही भेज देती थी। तो इस तरह से मेरे अभी भी मेरे पास मेरे ख्याल उस ज़माने के बने हुए वो जो राखियां हैं मैं बनाती थी, तो वो अभी भी अभी तक भी मेरे पास वो एक दो मैंने रखी हुई है सिर्फ याद के लिए। तो ये जो रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड स्ट्रेंथन द लाइफ लॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव केयर एंड प्रोटेक्शन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो बहनों और भाइयों की आपस में एक इज्जत मान रखने की और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का सम्मान करने की, एक दूसरे के लिए जो भी भावनाएं हैं, जो भी उनके भाई प्रॉमिस करता है बहन की रक्षा करने की, इस तरह की फीलिंग्स के लिए उनको कायम रखने के लिए ये जो त्यौहार हर साल मनाया जाता है, याददाश्त जब बहन राखी बांधती है तो उसको याद करवाया जाता है किस्म का कि हाँ उसकी जो जिम्मेवारी है। तो अब ये रक्षाबंधन इज एन एंशियंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द प्रोटेक्टिव लविंग बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेयर सिस्टर्स टाई ए सेक्रेड थ्रेड कॉल्ड द राखी अराउंड द ब्रदर्स रिस्ट। तो मिथोलॉजिकल स्टोरीज कुछ इस तरह है। लॉर्ड कृष्णा एंड द्रौपदी। व्हेन लॉर्ड कृष्णा कट हिज फिंगर द्रौपदी टोर ए पीस ऑफ हर साड़ी एंड टाइड इट अराउंड द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। Deeply moved by her care, Krishna promised to protect her forever, which he later fulfilled when she was in a grave peril. We all know that story. So, इस तरह से goddess Lakshmi and King Bali, seeking to win back Lord Vishnu, goddess Lakshmi tied a sacred thread around the demon King Bali's wrist, treating him as a brother. Touched by his gesture, King Bali granted her wish and helped return Vishnu to his abode. So Queen Kunti and Abhimanyu. Queen Kunti tied a protective rakhi around her grandson Abhimanyu's wrist before he went into the battle. So historic accounts, there are a lot of historic things that are tied to this special day. There's Queen Karnavati and Emperor Humayun. In the 16th century, widowed Queen Karnavati of Chittor faced a dangerous invasion. She sent a Rakhi to Mughal Emperor Humayun asking for his help. Despite their religious differences, Humayun accepted the bond of protection and mobilized his army to save her kingdom. Ye jo Karnavati thi, उसमें उसका रानी थी वो चित्तौड़ की, तो उनको खतरे पैदा हो गया कि उनके जो सेना घुस आई, तो फिर वो उन्होंने जो मुगल बादशाह हुमायूं थे उनको राखी भेजी और उन्होंने अपने धार्मिक जो उनके फर्क थे उसको भूल करके उन्होंने वो जो एक उन्होंने रिश्ता बनाया उसको मान लिया और अपनी सेना भेज दी उसकी राजधानी की सुरक्षा के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर्स मूवमेंट। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड रक्षाबंधन एज अ सिंबल ऑफ पीस हार्मोनी एंड कम्युनिटी सॉलिडेरिटी हैविंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाई कॉटन थ्रेड ऑन ईच अदर रिस्ट टू प्रोटेक्ट डिविजन। तो ये कुछ बातें, जैसे रक्षाबंधन आता है तो बहुत सारी जो चीजें हैं जुड़ जाती हैं इसके साथ। तो ये जो आपके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए गाना।

सभी का एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। हम इसी तरह आज राखी को मनाएंगे इन हवा की लहरों के जरिए, आप हमारे साथ राखी का त्योहार मनाएंगे। और क्या है कि आजकल वीकडेज में जब किसी के पास राखी आती है तो टाइम नहीं होता है, तो फिर वीकेंड में सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो राखी मनाते हैं। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्राइसिस व्यू पे मौजूद है, तो वहाँ पे भी न्यूली रेनोवेटेड है, तो आप लाइव कुकिंग भी करवा सकते हो। और जानकारी के लिए 905-814-1700 पर कॉल कीजिए, 9058141730 पे आप उनको न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट वालों को कॉल कर सकते हो। अगर आप मिल्टन में रहते हैं, आपने अपनी कार विंटराइज करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, ट्यूनअप करवानी है, टायर चेंज करवानी है, ऊबर की आपने सर्टिफिकेशन करवानी है, कार ली है उसकी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो ऊबर की अथॉरिटीज आपको करवानी है, तो आप जाइएगा योगी ऑटो सेंटर, 70 से 80 उनकी अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगी ऑटो सेंटर वालों के पास जाइएगा, 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में उनकी ये लोकेशन है, तो बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है, हाईवे के बिल्कुल पास है। तो और जानकारी के लिए आप आज ही अगर अपनी ऊबर की कोई भी अथॉरिटीज करवानी है या सर्टिफिकेशन करवानी है तो आप ही आज ही मिस्टर गिल को 905-544-6464 पर कॉल कीजिए, 9055476464 पर आप योगी ऑटो सेंटर वालों को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए, आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और आपके लिए आपका उनकी बहुत सारी टीम है, आपके सामान को बड़ी हफाजत से पहुंचाते हैं। तो 416-524-704 पर कॉल कीजिए और अपना ट्रक बुक कीजिएगा, 416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, तो आइए सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

छोटी बहन को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना, निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना।

जी हाँ, तो ये जो पुराने गीत है वो जो गाने हैं कि इतने कमाल के गाने हैं कि आपका जो फीलिंग्स एकदम ताजा हो आती हैं, ऐसे ही है ना। तो आइए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ आपको। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, और फिर आप अपने घर में बढ़िया सामान अपने घर में लेके आना चाहते हो, बढ़िया गैजेट्स किचन की लेनी है, लेटेस्ट एडवांस बढ़िया टीवी लेने हैं, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी मंथली वीकली स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आपने मूव होने हैं तो मूविंग के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए, कनाडा भर में मूव होने के लिए आपको मदद करते हैं, उनकी बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए, 416-524-4 तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। और अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलियन डिपो आपके लिए खुल चुका है, masterkalyandepot.com पर जाइए आप उनकी और जानकारी लीजिए, और किसी तरह का भी कुलीन का काम करवाना हो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, तो आज ही आप उनको masterkalyandepot.com पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। गोर रोड पे लंदन में मौजूद है मास्टर कलिजन डिपो।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन से जो G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। और रात को भी हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे, तो आप भी जरूर सुनना, क्योंकि हम राखी का त्योहार बस जारी रखेंगे मनाना, क्योंकि ये साल में एक दिन जो आता है तो ये जो दिन होता है खास दिन, तो बहुत ही प्यारा सा दिन होता है। लेट्स गो टू दिस वन ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो फिर रात को आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सुहागा भला, हैव ए वंडरफुल डे, एंजॉय द सेलिब्रेशन। और अब रात को फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सुहागा भला, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

मेरे काज करे मेरा प्रीतम मैनू चिंतना कोई करने हारा कर दापे जो सुन होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ 'च। ते तुसी साडे नाल एक बजे तक इंज ही जुड़े रहोगे, तो सुनते रहो साडा शो और नाल नाल असी बहुत सोहणियां सोहणियां गल्लां भी लैके आवांगे अज्ज।

0: In 1980, Terry Fox started a marathon against cancer. Today, you can help finish it. Join us at the Terry Fox Run on September 20th. Register and fundraise for cancer research at terryfox.org.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद करता हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो मेरे नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

बिजनेस नु प्रमोट कर ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: चक्कर लगाओ।
1: मैनूं पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज? कित्थों आएगी इनकम? किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे? अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो।

0: चावला।
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
2: टुडे विच लाइव गलबात कर लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
1: 905-564-6444।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग जी सारयां नूं वेलकम बैक शनिवार दी शाम दी महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो तुहाडा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वल्लों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुश आमदीद एंड स्वागतम

0: ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਐਨੀ ਹਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? 7:06 ਹੋ ਗਏ, 416-233-7368 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, 416-233-7368। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਅੰਦਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਪਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ।
1: ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਚਨ ਚ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ।
2: ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਸੈੱਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਨੀਅਰ ਚਕੂਜ਼ੀ, 905-450-2828।
3: क्या बात है, बड़े परेशान बैठे हो।
4: क्या बताऊं यार, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस रिन्यूअल आई है, फिर इंक्रीज हो गया। क्लीन रिकॉर्ड है, फिर भी हाई प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है।
3: बस इतनी सी बात, अभी फोन करो कुलविंदर गुलेरिया को, जो 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं और तुम्हारी होम, ऑटो और बिजनेस इंश्योरेंस प्राइस चेक करके ऑनेस्ट एडवाइस और बेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
4: थैंक्स दोस्त, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी।
3: यदि आप भी अपनी ऑटो, होम, बिजनेस, लाइफ या ट्रेवल इंश्योरेंस के बेस्ट रेट्स और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं तो फोन करें कुलविंदर गुलेरिया को 6472180726। दैट इज 6472180726।
5: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी, 6477022023, 647-702 V23,
6: लाइसेंस नंबर 10394।

वो आज हमको देख के शादां हुए तो हैं, वो आज हमको देख के शादां हुए तो हैं, तकदीर बदलने के सामान हुए तो हैं। अब वो भी रो रहे हैं मेरा हाल देखकर, मेरी तबाहियों पे पशेमां हुए तो हैं। समीन अक्सर हम सभी की तवक्को तो यही होती है कि हम किसी का हाल जान सके, किसी का हाल पूछ सके, या फिर यूं भी तवक्को होती है कि कोई भी हमारा हाल चाल पूछे। इसमें अजीब सी खुशी का एहसास होता है, मगर कभी कभी कोई अपना या फिर कोई बेगाना जब हाल पूछता है तो आंखें नम सी हो जाती हैं, रो पड़ती हैं। ऐसी ही एक गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान ने।

हमारे इश्क से इनकार क्यों है, हम नहीं समझे। उन्हें गैरों से इतना प्यार क्यों है, हम ये भी नहीं समझे। हमारे दुश्मनों की हर शिकायत मान लेते हैं, हमारा हर गला बेकार क्यों है, हम नहीं समझे। समीन, इश्क भी एक राज होता है और खुदा का भी यही फरमान है, क्योंकि खुदा भी एक राज की तरह है जिसे कोई भी ना जान पाया और ना ही समझ पाया। बस एक एहसास की तरह होता है, इसे चाहे आप इश्क कहिए या फिर खुदा कहिए। पेश खदमत है आबिदा परवीन की आवाज में गाई हुई एक बहुत ही उम्दा गजल।